0: गिलास तुमको वा भी
1: ओटा अम्बुलेंस देने से बना दी रे आज अच्छा तो नंबर आप बात के पास जो योम दे कुल कुल बड़ा बिटी पिलोट ये तो और जाने लाख नेरा तो चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना क्यों बना तो चाहे ना ली बेजान रहते ना इसीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बी जान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह बोला बी बी चाहे नासा जी वो तो बोला साफ चाटा दे पार्सन
2: सार के बेन यंग के कंजान वो तुम्हें ना येरा मत बेन तुम पुल्टो ना कहें पुल्टो ना मार तो कहें पुल्टो ना पता लो सामने में जेट जेट से कमल तो जाला मिस जो क्या तब तो Mandroso y Madagascar.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: मनावलनी फुका पार तंती तंती
2: मेरा फुका पार क्या तीनं बाजारा लुइस क्योंसी आपन इशातोन ये फं बास ला सही नवीत सार
1: और मनावलन कुसं दे क्या फामुआं बुका तो तन फुका मायन फाम कातो
2: फुका माम मुरा मुरा यानी असन लाला नाराज़ के
1: क्यों नहीं जमतो
2: आ दिमाग पुल स्वीट अंडवान
1: दिमाग रंटी ना मास्करीना नहीं होती
2: तो कुनवारी सचिन मास्करीना बीडीबी आज ये ना नयान लो एफी पीछे नहीं ले रहे थे ऐ फसे इजाफा मिस
3: ने फातियां तो कॉलु जाने आज लसे ना वे मिस सचिया रात्स ले लाला रिफरात्स ले लाला ना जाने दिरो पंजीफली पाप हिट जाने चाह फकनी इविदी लाफों बंबों को कुछ सचिया मामिस दे पांच सौ कुछ ओमले आर फरातिं दाला इक्लाउज़ो में जेती ये तो निफ्टियां ना सरे वेट सान्या मा लकिते की ओमनी तीमा पुल्स वालो उन्चिलाउ फितंजात भारी कुटियो
1: इवरा नी मास्करीना निर्देशनारो तो करने में निर्देशनान जान
3: रा मास्करीना जान जीरेना बफारा फरात जान बतुकुमेर उन्जात सिरिव ना तीमा जात सिरिव वांडा जीरेनी ओम दे पांचन लीज tornara eo mbotry fary katsaka mantititina izay antio

0: गिलास तुम कुफा भी
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना तिम्यासा अंतिक्यां सया आर मनां प्यासे आन रतेरे का देता इतां बहुप शिक्या दिमा नुना निफितुन्रान आर जान मनुना फितुन्रान सान्या तिम्यास फाच्म्यात से जकूर फाम्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदेन फितुन्रान मतेत्या मायेनों ने बात क्यान फरानीस ननांगना आरनीस नताक्यां तिफना फोशांतिया रानीस वोलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास म्यारा म्यांग्या आर साचिक्यान उम्तेनें जान चिशाबक्यान दान जान चिशाबक्यान इसलुक्यान जान फसान मसावा जान तोम ततारन तिफिरेनें ती कदेमा नोंचावं चिकेरेटा रेट tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity firenena ity tsy moro zany sarotro zany kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: तुम कुफा भी
1: रेफमिसि नि फितुराना चिजाकन फवोका चिमैची अमने नारनी फ्लारंबे जे चिंतुना बास फ्लारंबे आरा चचापनारो ने फवे चिनि दि फितुनानारो ति फतुगुनियाला नि रिटनि नंबर फुलतोना रावो निदिन संदाले बेन फवोका अमनाले मारते सनेचने तुकुन फनेर टेटे नारो तमनिसै।